0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स
1: फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जितनी बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो एंड यू गेटिंग नॉटी, यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ तृप्ति डिमरी. आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा ना, जूते पड़ेंगे इतनी जोर से.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट यू नो व्हाट, वी आर नॉन जजमेंटल आउट देयर. अपनी कन्फेशन जस्ट हिट मी अप विद इट, वी विल टॉक अबाउट इट, आई विल रोशिफाई यू एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी डॉल.
3: हेलो, हाय रोशी, कैसे हो आप?
1: हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ. आपकी कन्फेशन इतनी स्पाइसी लग रही है कि मेरी फोन लाइन ऑलरेडी ऐसे सोच के आपकी कन्फेशन के बारे में से कड़कड़ फिस फिस कर रही है. बट हिट मी विद योर कन्फेशन, क्या है आपकी स्टोरी?
3: हाँ, कन्फेशन तो क्या स्पाइसी है, आई एम फीलिंग अ बिट गिल्टी एज वेल.
1: ओके,
3: क्योंकि यस, सो क्या है ना कि मुझे ना मेरे कॉलेज प्रोफेसर पर क्रश है.
1: ओके,
3: ठीक है. आई रियली लाइक हिम.
1: ओके,
3: ठीक है. बट ऐसा तो आपने पहले भी सुना होगा. जो आपने नहीं सुना होगा वो मैं आपको बताती हूँ
1: आज. ठीक है, हिट मी विद इट.
3: यस, तो द थिंग इज कि मेरे को ऑब्वियसली यू नो गर्ल्स आर सच स्टॉकर्स, तो मैंने सारी कुंडली निकाल ली, मुझे मैंने सब कुछ पता कर लिया कॉलेज प्रोफेसर के बारे में. एंड मुझे पता चला कि उनका एक भाई है जो मेरे ही बैच में पढ़ता है और यू नो दैट थिएटर क्लब, उसमें वो है. एंड जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सीधा वो क्लब ज्वाइन कर लिया. है ना, मैं सोचा चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी इसी चक्कर में. तो यू नो मेरी बात हुई उससे, होती रही. एंड यू नो कब मैंने उसे पटा लिया, ये समझ लो आप. ठीक है, सो आई हैव अ क्रश ऑन माय प्रोफेसर, बट मैंने उनके भाई को पटा लिया है. एंड प्यार हुए करती हूँ उससे. मैंने बस उससे इसलिए पटा है जिससे कि मेरा थोड़ा आना जाना रहे उनके घर पे. समझ रहे आप?
1: दिस इज सो वाइल्ड. तो जब आप उनके घर जाते हो, अपने कॉलेज प्रोफेसर के घर, द वन दैट यू हैव द हॉट्स फॉर, वो आपको देख के ये नहीं सोचता कि मेरे छोटे भाई की इतनी प्यारी छोटी गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स.
3: हाँ, यू नो मतलब जब वो नहीं होता ना मेरे साथ, तो तब मैं उन्हें ताड़ती रहती हूँ, मैं उनके साथ ही बातों में लग जाती हूँ.

0: Presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents मिर्ची 9 लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन. इट्स डैम एक्साइटिंग. एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर है. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब. मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. लेट्स सी हु इज ऑन लाइन विद मी. हेलो.
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi No Luck Ka Haar and Aazmao Your Luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: All right, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है. मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ. And अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर. All right, are you a movie buff?
2: Yes.
1: All right, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: All right. So अब आप next round में चले गए हो. नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए.
2: थैंक यू. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड. सो फार इज गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज़ दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल द पूजा एंड ऑल. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.
1: ओके. ऑलराइट.
2: वी डोंट सेलिब्रेट बट वी टेक पार्ट इन. वी जॉइन फ्रेंड्स.
1: ग्रेट ग्रेट. आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
5: Listener mein back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
1: मैंने अपनी जिंदगी की पहली गरबा पार्टी अटेंड की. इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ इट वेंट, लेट मी टेल यू, एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो इट वॉज अ डिजास्टर. क्योंकि सबसे पहले तो मुझे डांडिया खेलना नहीं आता. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज होल्डिंग डांडिया सिक्स. पहले तो मैं दो बार खुद के लहंगे पर गिरी, विच वॉज वेरी फनी. क्योंकि आप डांस कर रहे हो लेकिन आपको चलना नहीं आता, ये आप भूल गए और आप हीरो बनकर डांस करने चले गए. इट वॉज सो एम्बैरेसिंग. एक सर्कल में ऐसे अपने खुद के लहंगे पर, सॉरी घाघरे पर, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर. एंड इफ दैट वॉज नॉट एम्बैरेसिंग इनफ, जो मैंने अगला काम किया उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई भी अपने गरबा नाइट के लिए बुलाने वाला है. क्योंकि आई एंडेड अप हिटिंग माय गरबा पार्टनर ऑन हिज फेस विद माय डांडिया स्टिक. मतलब मुझे पहले बता देना चाहिए था कि आई जस्ट कम एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर एंड लुक प्रिटी. क्योंकि उससे ज्यादा अगर आपने मुझसे उम्मीद की तो हो सकता है कि भाषण के अलावा आपको कुछ ना मिले. अगर आपने भी ऐसे ही कोई गरबा नाइट अटेंड की है एंड इट एंडेड अप इन अ ग्रेटर फियास्को, आपको मुझे इसके बारे में जरूर बताना होगा. क्योंकि दैट्स दी ओनली वे आई विल एंड अप फीलिंग बेटर. और वो बताने के लिए व्हाई डोंट यू व्हाट्सएप मी फॉर अ चेंज ऑन 9930983983. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: शर्मा टेलर डाउन द रोड तो अब साड़ी स्टिच कर देता है 1500 रुपए में. कैन यू बीट दैट? आई कांट बिलीव दैट माय कजिन्स ऑन अ ग्रुप कॉल आर टॉकिंग टू इच अदर अबाउट दिस कि हाउ अब शर्मा जी टेलर जो है वो 1500 रुपए में मात्र आपकी साड़ी को एक नॉर्मल शिफॉन के पीस से बदल देते हैं इनटू अ प्री स्टिच साड़ी. अब आपको 8000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है. ये फालतू इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आपके लिए फालतू नहीं है. यू डोंट वॉन्ट टू वेयर अ सलवार कमीज बिकॉज फेस्टिव सीजन है. यू वॉन्ट टू वेयर अ साड़ी एंड लुक वेरी वेरी गॉर्जियस. लेकिन अब इसे प्लीट प्लाट करने का टाइम आपके पास है नहीं और एनर्जी भी नहीं है. तो शर्मा टेबल I promise you, I don't use any substance. I swear, magazam. Anyway, तो ये शर्मा टेलर जो है अर्थात आपके ये जो भी लोकल किराने के टेबल आपके किराने के टेलर इन्हें अपनी मम्मी की पुरानी शिफॉन की अच्छी सी साड़ी दे दो, वो आपको स्टिच कर देंगे और उसके बाद आप बिल्कुल लगेंगी द यंग एंड हॉट एंड हैपनिंग महारानी गायत्री देवी इन हर हेडेज. यू आर वेलकम फॉर दिस एंड आई एम टेलिंग यू आई एम यूजिंग नो सब्सटेंसेस. ऑन दैट नोट, मैं बस जस्ट फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ी खुशखाश हूँ. अगर आप भी ऐसे ही खुश हो या आप शर्मा जी टेलर नॉट टेबल का नंबर चाहते हो, देन हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Rajas are wearing Rani Hars this festive season और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I don't understand लोग मुझे क्यों बुलाते हैं अपने ये गरबा पार्टीज के लिए और दिवाली पार्टीज के लिए और कार्ड पार्टीज के लिए, बिकॉज मुझे इनमें से कुछ नहीं आता. ना कार्ड खेलना आता है, ना गरबा करना आता है. मैं सिर्फ वहाँ बैठ कर लोगों को जज कर सकती हूँ, विच इज़ एग्जैक्टली वट आई डिड दिस टाइम अराउंड. सो इट लुक्स लाइक इस 2026 के फेस्टिव सीजन में द गाइज आर ऑल गोना वेयर लाइक बेसिक सिल्क या यू नो दो सैटनी कुर्ते, वाइट कलर के, क्रीम कलर के, विच इज़ द कलर ऑफ द सीजन एनी वे. एंड देन ऐसे बड़े बड़े एमरल्ड्स एंड रूबीज के हार, डूड, लाइक वो हार मैं अपनी शादी में ना पहनूं. बंदे पहनकर डांडिया कर रहे हैं एंड यू आर लाइक यार, आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट यू फील लाइक आप किसी जगह के प्रिंस हो, लेकिन आप कर तो डांडिया ही रहे हो. इतना भी डेक्टिव होने की जरूरत नहीं थी. बट हु एम आई टू डिसाइड फॉर पीपल इफ दिस सीजन इज ऑल अबाउट गाइज वेयरिंग बेसिक लाइक कुर्ताज एंड स्टफ एंड लाइक डेकिंग अप विद ज्वेलरी. डूड, मेरे तो अंदर से भी आवाज़ ऐसे डूड टाइप निकल रही है. आई वांट टू नो व्हाट यू आर वेयरिंग दिस फेस्टिव सीजन. और वो बताने के लिए हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: presented by Virani Jewelers.
1: वीरानी जूलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची, नौ लग का हार चल रहा है मिर्ची पर. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और मेरे साथ में कौन है? हेलो.
2: Hi, Prasad. Good morning. This is Parth.
1: Hi, Parth. Good morning. Happy Navratri.
2: You too.
1: So, what's happening? Navratri में क्या चल रहा है?
2: Nothing much. Just driving to work. I wish I was back in India right now, because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri. Yes.
1: All right, game show.
2: Majama.
1: All right, मुझे इतना ही गुजराती आता है, but I'm going to ask you the question for you to enter the next round. Okay, are you ready?
2: Yes.
1: All right. So, are you a 90s kid?
2: Yes.
1: Okay. So, this one would be easy for you. Tell me who played the famous villain Mogambo in Mr. India. Quickly.
2: That was Amrish Puri.
1: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
2: Thank you.
1: You've moved to the next round, and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
2: all right.
1: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
2: Okay. Sounds good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
1: Oh, my pleasure. Thank you so much.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
4: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
0: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Tera kya hoga, Kalya?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: If you are single this festive season, then may I suggest कि आप एक बार में सिर्फ एक मोतीचूर का लड्डू खाना या सिर्फ एक काजू कतली या एक पीस मिल्क केक. Why I'm emphasizing on the number one is क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि जब भी हम कोई कार्ब लोडेड फूड खाते हैं जिसमें या तो चीनी ज्यादा होती है या नमक ज्यादा होता है या ज्यादा चटपटा होता है, हमारे ब्रेन में एक ऐसी कैलकुलेशन कन्फिगर होती है That puts us in the mood for getting naughty. अब इमेजिन करो कि आपने एज अ सिंगल पर्सन जिसे काजू कतली बहुत पसंद है एक बार की सिटिंग में 250 ग्राम खा तो ली. उसके बाद व्हेन यू फील लाइक गेटिंग नॉटी एंड यू रियलाइज यू आर सिंगल, जो बीटी होगी ना उसे तो मैं भी सॉर्ट नहीं कर सकूंगी. बट अगर जिंदगी में वैसे ही बीटी हो रही है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट एंड फील बेटर, प्रॉमिस. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Treat me badly once, shame on you. Treat me badly twice, shame on me. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सिटकॉम देख रही थी, उसमें ये जो बहुत ही अमेजिंग मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी वाली बंदी है समांथा, वो अपने गर्लफ्रेंड्स को बता रही है कि अगर मैं एक हुकअप में हूँ और मुझे एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो वो उस बंदे की गलती है, लेकिन अगर उस बैड एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर से उस हुकअप में दूसरी बार जा रही हूँ देन शेम ऑन मी, क्योंकि जानते हुए मैं ये गलती दोबारा कर रही हूँ. एंड समांथा, आई हैव अ फीलिंग इज नॉट दी ओनली वन. मेरी बेस्टी for starters is guilty of doing this. तो कई बार ऐसे वीकेंड पे नहीं होती है भाई डेट एंड शी गोज एंड डेट्स दीज रियली बैड हुकअप्स, जो उसने कसम खा ली होती है दो हफ्ते पहले की इसकी शक्ल भी नहीं देखेगी. कट टू शी इज लाइक, यार मतलब डेट नाइट का सीन बन रहा था मेरे दिल में एंड मेरे पास कोई बंदा नहीं था, तो आई वेंट आउट विद दिस गाय एंड आई वाज लाइक, भाई तेरा दिल कितना ही अमेजिंग है, लाइक इट फ्लक्चुएट्स मोर देन द टाइड इन गोवा. मतलब पता ही नहीं चल रहा कब आ रहे कब जा रहे क्या हो रहा है. लेकिन सीरियसली, ये समांथा वाली एडवाइस आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कूल. और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है दैट अगर आप किसी ने मेस अराउंड किया पहली बार, शेम ऑन देम, दूसरी बार किया शेम ऑन यू, व्हाई आर यू गोइंग इन फॉर सेकंड्स टू स्टार्ट विद. और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जितनी बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो एंड यू आर गेटिंग नॉटी, यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ तृप्ति डिमरी. आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा ना, जूते पड़ेंगे इतनी जोर से.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट यू नो व्हाट, वी आर नॉन जजमेंटल आउट देयर. अपनी कन्फेशन जस्ट हिट मी अप विद इट, वी विल टॉक अबाउट इट, आई विल रोशिफाई यू एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी डॉल.
3: हेलो, हाय रोशी, कैसे हो आप?
1: हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ. आपकी कन्फेशन इतनी स्पाइसी लग रही है कि मेरी फोन लाइन ऑलरेडी ऐसे सोच के आपकी कन्फेशन के बारे में ऐसे कड़कड़ फिस फिस कर रही है. बट हिट मी विद योर कन्फेशन, क्या है आपकी स्टोरी?
3: हाँ, कन्फेशन तो क्या स्पाइसी है, आई एम फीलिंग अ बिट गिल्टी एज वेल.
1: ओके,
3: क्योंकि यस, सो क्या है ना कि मुझे ना मेरे कॉलेज प्रोफेसर पर क्रश है.
1: ओके,
3: ठीक है. आई रियली लाइक हिम.
1: ओके,
3: ठीक है. बट ऐसा तो आपने पहले भी सुना होगा.
1: हाँ.
3: जो आपने नहीं सुना होगा वो मैं आपको बताती हूँ
1: आज. ठीक है, हिट मी विद इट.
3: यस, तो द थिंग इज कि मेरे को ऑब्वियसली यू नो गर्ल्स आर सच स्टॉकर्स, तो मैंने सारी कुंडली निकाल ली, मैंने सब कुछ पता कर लिया कॉलेज प्रोफेसर के बारे में. एंड मुझे पता चला कि उनका एक भाई है जो मेरे ही बैच में पढ़ता है और यू नो दैट थिएटर क्लब, उसमें वो है. एंड जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सीधा वो क्लब ज्वाइन कर लिया. है ना, मैं सोचा चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी इसी चक्कर में. तो यू नो मेरी बात हुई उससे, होती रही, एंड यू नो कब मैंने उसे पटा लिया, ये समझ लो आप. ठीक है, सो आई हैव अ क्रश ऑन माय प्रोफेसर, बट मैंने उनके भाई को पटा लिया है. एंड प्यार हुए करती नहीं उससे, मैंने बस उससे इसलिए पटा है जिससे कि मेरा थोड़ा आना जाना रहे उनके घर पे. समझ रहे आप,
1: दिस इज सो वाइल्ड. तो जब आप उनके घर जाते हो, अपने कॉलेज प्रोफेसर के घर, द वन दैट यू हैव द हॉट्स फॉर, वो आपको देख के ये नहीं सोचता कि मेरे छोटे भाई की इतनी प्यारी छोटी गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स.
3: हाँ, यू नो मतलब जब वो नहीं होता ना मेरे साथ, तो तब मैं उन्हें ताड़ती रहती हूँ. मैं उनके साथ ही बातों में लग जाती हूँ, अपने प्रोफेसर के साथ, यू नो. एंड मार्क्स सीखना भी हो जाता है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, यू नो. सो यस, सो विन विन फॉर मी.
1: रोशिफाई कर दूं आपको, नॉट दैट यू साउंड लाइक यू आर फीलिंग गिल्टी एट ऑल, बट जस्ट मेरा फर्ज बनता है, सो आई एम आस्किंग. Would you like some?
3: कर दो.
1: You're like,
3: जरूरत है मुझे तो.
1: लग नहीं रहा है आपकी बातें सुन के.
4: You've been roshified.
1: But honestly speaking, मेरी लाइन की कड़कड़ से ज़्यादा स्पाइसी है आपकी कन्फेशन. Just FYI.
3: Well, Roshi, मैंने सोचा आज मैं भी कुछ बता दूँ तो.
1: It was amazing talking to you. अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह you have any confession, hit me up with it. मेरे पास ऐसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान, find me on the gram या Facebook. And while you do that, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं मुलत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद वारसी.
1: अर्शद वारसी इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर. ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिंदगी में 1480 बार डेट करने के बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लव्स हमारी जिंदगी के कभी रोमांटिक थे ही नहीं. देवर वो दोस्त जो हमारा फोन रात के 3 बजे आंसर करते थे, वो दोस्त जो हमारे साथ बैठते थे व्हेन एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट, वो दोस्त जो हमें 5 वर्जन्स ऑफ आर सेल्व्स बनते हुए देखते थे राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. एंड ऑनेस्टली सम फ्रेंडशिप्स आर लव स्टोरीज टू. और अगर मेरी ये बात सुनकर आपको उस एक दोस्त की याद आ रही है, देन आई वॉन्ट टू नो कि वो दोस्त कौन है और उसके साथ क्या है ये लव स्टोरी जो खत्म होते ही नहीं होती है. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आप मुझे इंस्टा या FB कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, एंड ज्यादा मेहनत करोगे तो अपने दिल में भी पा सकते हो मुझे, बट सिर्फ इंस्टा या FB पर ही अपना नंबर भेज सकते हो. सो डू दैट, एंड व्हाइल यू डू दैट सो दैट आई कैन गेट इन टच विद यू, एक चीज जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी वो ये है कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, Virani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla, mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, क्या चल रहा है?
2: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है.
1: All right, कैसे जा रही है नवरात्रि? मजा आ रहा है?
2: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के टाइम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग. लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची 9 लाख का हार.
2: ओके.
1: ऑलराइट, सो सची क्विकली मुझे ये जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये सची.
2: या थैंक यू सो मच.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi 9 Lakh Ka Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ki abhi. And you could be the next participant in Mirchi 9 Lakh Ka Haar.
0: Mirchi 9 Lakh Ka Haar presented by Virani Jewelers.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूं श्रेया।

ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली? मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए, अभी इनके बारे में बताऊंगी। गानों के उस पार मिलते हैं ना पुरानी जींस पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थे तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: एक ट्रक आ रहा
1: झूठ मत बोल
2: आ नहीं जा रहा
0: देखो तुम्हारा

0: हल्ला मचाएंगे, दुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी, 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। NM केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विद मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है, 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: I want to live the story of Madhubala.
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सुबह वापस आऊं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन। इट्स डैम एक्साइटिंग। एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब। मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। लेट्स सी हू इज ऑन लाइन विद मी। हेलो।
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi No Luck Kahar and Azmao your luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: All right, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर। Alright, are you a movie buff?
2: Yes.
1: Alright, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: Alright, so अब आप next round में चले गए हो। नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए।
2: थैंक यू, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर।
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज़ दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल दैट पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड।
1: ओके, ऑलराइट।
2: वी डोंट सेलिब्रेट बट या वी टेक पार्ट इन, वी जॉइन फ्रेंड्स।
1: ग्रेट, ग्रेट। आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: ये है पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है, तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी, और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी, और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनल

0: एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा क्या बात हो रही थी। देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग दर मिर्ची पे चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन The grand prize of gold kachin. Let's see hamari agli contestant ka kya naam hai. Hello.
2: Hello, hi.
1: Hi, what's your name?
2: Hi, my name is Deepthi.
1: Hi, Deepthi. How are you doing today?
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: Kaise ja rahi hai Navratri abhi tak?
2: Good. It's going great.
1: All right. Kahan se ho aap India mein se?
2: Main UP, Lucknow.
1: Arre wah, Lucknow se hain. So, let me ask you my next question quickly.
2: Yeah, yeah.
1: Aur dhyan se sunke jaldi se jawab dena, theek hai? Within seconds you have to answer ki what is India's national animal?
2: It's tiger.
1: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहाँ पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूं श्री।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पुरानी जीन्स में आभूष रिया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना। एंड या इफ यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। गुड नाइट।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: शख्स है।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं मुरत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great, great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर. ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, Virani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla, mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, kya chal raha hai?
2: Bas abhi to navratri chal rahi hai.
1: All right, kaise ja rahi hai navratri? Maza aa raha hai?
2: Nahi, yahan to India miss ho raha hai.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लक का हार.
2: ओके
1: ऑलराइट सो सची क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये सची.
2: या थैंक यू सो मच.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi 9 lakh ka haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi. And you could be the next participant in Mirchi 9 lakh ka haar.
0: Mirchi 9 lakh ka haar presented by Virani Jewelers.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी भी चीज बात या दूसरों के प्रति ग्रज को लेट गो करना क्यों इतना चैलेंजिंग होता है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: नवरात्रि के दिनों में, दुर्गा पूजा के दिनों में हम ये आठ भुजाओं के बारे में, विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आठ पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मुझे इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेशन लगा। जब हम बात कर रहे थे, हमने पावर टू टॉलरेट की बात की, पावर टू एडजस्ट की बात की। वन ऑफ द पावर्स यू सेड, आपने मुझे बताया, वो है पावर टू लेट गो। और ये मुझे बड़ा इंट्रीगिंग इसलिए लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट चीज है करना, क्योंकि ये जो बात होती है ना हमारे दिमाग में जो चलती रहती है, ये इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये जो चीज है, जो मेंटल साइकिल है ना, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पावर टू लेट गो जो है, चाहे वो लॉस हो, बिट्रियल हो, गिल्ट हो, एंगर हो, लव भी हो, लॉस तो है ही
4: जी,
3: ये कैसे इंसान, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू लेट गो?
4: होल्ड ऑन करते हैं, और जितना ज्यादा समय जिस चीज को होल्ड ऑन करते हैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है लेट गो करना। पहले तो करना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। कई लोग करना ही नहीं चाहते, कहते मैं तो ये बात जीवन भर
3: नहीं छोड़ूंगा,
4: नहीं भूलूंगा। सो यू नो, आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चीज रियलाइज नहीं करते कि पकड़ने में नुकसान उनका है
3: जी।
4: बना भाव ये है कि दर्द में आप है, बात आपने पकड़ी है, आपके मन में चल रही है, आप उस चीज में जो दर्द क्रिएट कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने पकड़ के रखी है तो शायद वो दर्द में है।
3: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, दर्द में हम ही हैं और दुखी भी हम ही हैं।
4: हमें लगता है मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आई विल नेवर फॉरगिव यू। सो व्हेन वी से आई विल नेवर फॉरगिव यू, इन अ वे यू आर सेइंग, आपको पता नहीं चलता, पर इन अ वे यू आर सेइंग कि मैं हमेशा दर्द में रहूंगी।
3: हाँ हाँ, ये आपने पहले भी बात कही थी, और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अपने ही दिमाग में चला रहे होते हैं, हम ही परेशान हो रहे होते हैं और हम ही लेके बैठे होते हैं। शायद सामने वाला तो आगे बढ़ भी गया हो जिंदगी में,
4: वो बढ़ ही जाता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता, कहते अच्छा मैंने ऐसे बोला था, उसको कई बार रियलाइज भी नहीं होता
3: जी, बिल्कुल।
4: कई बार तो बातें इतनी छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन सामने वाले को ये भी रियलाइज नहीं होता कि उसकी कोई भूल है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, फुलफिल नहीं हुई होती, तो हम उस चीज के हर्ट में चले जाते हैं। इसलिए लेट गो, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिसीजन ये लेना है कि मुझे लेट गो करना है, बातों को लेट गो करना है कि उसको पकड़ करके रखना है
3: जी।
4: अब क्यों लेट गो करके रखना है, सिंपल हमने देखा कि क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है
3: तो मुझे दुख हो रहा
4: तो
3: है,
4: जी। तो ये अपने प्रति कंपैशनेट होना है, ये अपने प्रति रहमदिल होना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसे लेट गो करना हमारी एक शक्ति बन सकती है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: तो पावर और लेट गो में सिस्टर मुझे ये पूछना है कि इसको पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि लेट गो करने से बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत बरसों तक उसको लेके चलते रहते हैं, इसको पावर क्यों समझा जाता है?
3: लेट गो करने से परेशानी नहीं होती, पकड़ के रखने से परेशानी होती है।
1: हाँ,
3: लेट गो करने को पावर क्यों कहते हैं? जैसे ही आपने लेट गो किया
1: तो फ्री महसूस होता है।
3: मैं कभी कभी हमारे पास भी लोग जब स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए आते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं, चाहे कुछ देर के लिए भी उनको, कि आप इसको लेट गो करो या जो हो गया पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ या आप उसको फॉरगिव कर दो या माफ करो, तो एकदम उनको बहुत हल्कापन फील होता है, फ्री फील होता है, क्योंकि वो आपने पकड़ के दिया था। व्हेन यू वर होल्डिंग ऑन तब परेशानी हो रही थी, तब तकलीफ हो रही थी।
1: लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि कई बार अपने घरों में भी होता है, सबके घरों में होता होगा, कि जब एक बुजुर्ग है वो अपनी जिंदगी देखते हैं पीछे, या किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो बोलते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे पैसे लूट लिए, उसने मुझे ठग लिया। जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ हुआ, और वो बात रोज रोज दोहराते रहते हैं। तो अगर ये एक पावर है और अगर करना आसान होता तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अक्सर हर घर में ना ये बात रिपीट पे लूप की तरह चलती रहती है। तो एक आसान तरीका कैसे है इसको चेंज करके दूसरी तरफ जाने का?
3: आसान है, मुश्किल है, वो तो सेकंड स्टेप होता है
1: जी।
3: पहले होता है करना है कि नहीं करना है।
1: करना है ये तो समझ में आ रहा है, वरना हम ही दर्द में रहेंगे।
3: हाँ, पहले, क्योंकि कई लोग नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो ये बात नहीं भूलनी, मरते दम तक भी नहीं भूलनी, पीछे वालों को भी कह करके जाएंगे कि मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना।
1: हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रही
3: हैं, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
1: सो
3: द फर्स्ट थिंग, ठीक है, अगर आपने इस चीज को रियलाइज कर दिया कि अच्छा ठीक है लेट गो करना है, तो उसमें जब भी कोई बात होती है, जैसे आप देखें आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते थोड़ा सा गिर जाता है, तो आप पहली चीज क्या करते हैं?
1: कोई एक गीला कपड़ा लेके उसको पोंछने की कोशिश करते हैं।
3: आपने ये देखा होगा कि कई बार चाय का कप भी वहीं छोड़ देते हैं।
1: हाँ।
3: और पहले जाकर के उसको साफ करेंगे।
1: हाँ।
3: आप बेड पर बैठ करके पी रहे हैं, गिर गया तो आप फटाफट चादर उठाते हैं, क्योंकि वो चादर तक रहे
1: अंदर
3: मैट्रेस में ना जाए। मना जितना जल्दी आप करेंगे
1: उतना अच्छा होगा। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया।
3: जितना जल्दी करेंगे उतना इजी है, नहीं उतना इजी है। अभी आपको वो दाग चद्दर से निकालना इजी है, मैट्रेस से निकालना बहुत मुश्किल है।
1: हाँ, निकलेगा नहीं, वो तो मैट्रेस में रह जाता है, मैट्रेस तो आप उसको खोल के नहीं ठीक करेंगे।
3: निकल तो जाता ही है आजकल ऐसे ऐसे चीजें, मतलब भाव मेरा ये है कि कितनी भी पुरानी बात हो निकल तो जाएंगे, ये नहीं हम कह सकते,
1: समय लगेगा,
3: मेहनत लगती है।
1: जगजीत सिंह साहब की एक बहुत खूबसूरत गजल है, उसमें एक लाइन है कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है।
3: बस ये चीज है, वो वक्त बहुत लगता है, फिर उस वक्त में कई बार इतना पेशेंस नहीं होता, कई बार किसी को कहेंगे ना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने साल आपने पकड़ के रखा है, इतने साल आपने नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करी है, आज आप एक दिन में सोचते हैं कि मैं लेट गो कर रहा हूँ अब सब ठीक हो जाए, वो नहीं होता है,
1: नहीं होता,
3: क्योंकि आपको वो वक्त हीलिंग के लिए, आपको भी हीलिंग के लिए वक्त लगता
1: है,
3: सामने वाले को भी हीलिंग में वक्त लगता है। तो बेटर तो ये होता है कि बहुत जल्दी लेट गो करें, उसी सेकंड करें। अगर समझो आपने किसी को कुछ बोल भी दिया, आप तुरंत उस चीज को अपोलोजाइज कर लें, या आपने कोई चीज पकड़ के रखी है, समझो आपके मन में नेगेटिव चलना शुरू हुआ, जैसे शुरू हुआ आप उसको फुल स्टॉप लगा करके जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लें, जितना फास्ट हो, जैसे हम कहते हैं तुरंत दाग धोए नहीं तो वो दाग उतना गहरा हो जाएगा। चलो आपको उस दिन नहीं रियलाइज हो रहा, तुरंत नहीं रियलाइज हो रहा, कम से कम हर दिन के एंड में तो करना ही चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ग्रज भरी हुई है और उसे हमें लेट गो करना चाहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: तो एंड में जैसे एट द एंड ऑफ द एवरी डे हमें रियलाइज हो या ना रियलाइज हो, हम क्या कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल, एक क्रिया बताइए।
3: हर चीज की एक ओरिजिनल नेचर होती है, जैसे पानी की शीतलता देना है, अग्नि की गर्माहट देना है, ऐसे ही हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो पीस है।
1: जी बिल्कुल,
3: आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, उसको शांति चाहिए नहीं है, वो है ही
1: शांत।
3: अगर आपको आपके ओरिजिनल नेचर एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, माना आपने कुछ पकड़ के रखा है।
1: अच्छा, तो अगर मन कौतूहल है, मन में अशांति है, तो फिर ओरिजिनल नेचर पे हम नहीं है।
3: नहीं, अब कोई डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, ओवर थिंकिंग है, अंदर ही अंदर आप किसी के बारे में थोड़ा बैठ जाइए, अभी दिन पूरा होने से पहले
1: बैठे हम
3: बैठे उसको अब आप रियलाइज करें क्या है,
1: क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में,
3: क्या चल रहा है। समझो कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है किसी के बारे में, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये क्या हो रहा है, दाग गहरा हो रहा है। शांति वाइट है, आप उस पे जैसे ब्लैक सर्कल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं,
1: बड़ा होते जा रहा है,
3: वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सुबह उठ करके आपको लगेगा अरे कैसा मना जीवन कैसा है, मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत, लेकिन वो आपने किया अपने संकल्पों से।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब हमें दूसरों के खिलाफ कोई द्वेष हो, गुस्सा हो या ग्रज हो, उस केस में हम मन की शांति कैसे हासिल कर सकते हैं?
3: तो जब मैं शाम को बैठा और मैंने रियलाइज किया, हर शाम को मैं क्रिया करता हूँ कि यार मेरे मन में चल रहा है, तो उस समय उससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ?
4: रियलाइज किया, पहले तो रियलाइज किया कि पीस नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। सेकंड स्टेप रियलाइज किया क्या चल रहा है।
3: हाँ।
4: मतलब पहली रियलाइजेशन हाँ। फीलिंग की थी
3: पहले कि भाई कुछ गड़बड़ है।
4: हाँ, थॉट हाँ। नहीं पकड़ में आया, फीलिंग पकड़ में आई। हाँ। फीलिंग पीस की नहीं है, फीलिंग डिस्कम्फर्ट की, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो फीलिंग जो अनईज की है
3: वो कहाँ से आ रही है?
4: वो आपके किसी थॉट से आ रही है, आपकी क्रिएशन है वो। किसी ने कुछ भी बोला होगा लेकिन वो आपके क्रिएशन है। फिर आपने रियलाइज किया कि कुछ वेस्ट चल रहा है। थर्ड, आप उसको ट्रांसफॉर्म करें।
3: अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या बोले अपने आपको?
4: उन्होंने बोला उनका मन ठीक नहीं होगा, अपने ही तो है, अपनों की बातों को पकड़ करके रिश्ते खराब क्यों करने, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप। अच्छा, प्यार से उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव सोचने से क्या फायदा है। यू आर, जैसे हम किसी से बात करते हैं करते हैं ना किसी से, ऐसे हम अपने से बात करके अपने को हील करते हैं।
3: ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी नाइस कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं अच्छे तरीके से, अपने आप से भी वैसे बात करें और ये बातों को धीरे धीरे छोड़ें।
4: सब यू लेटिंग गो द पेन ना, किसको लेट गो कर रहे हैं? बात तो वही है, देखो बात तो डिलीट हो गई, कहेंगे डिलीट कर दो, तो बात तो डिलीट हो नहीं सकती। क्या डिलीट कर रहे हैं आप? पेन को डिलीट कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया।
4: चादर तो वही है, आप दाग को डिलीट कर रहे हैं। जो आपने ऊपर से पेन क्रिएट कर लिया
3: उसको डिलीट,
4: आप उसको डिलीट कर रहे हैं, आप अपने को हील कर रहे हैं।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेट गो कैसे करें?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार ये जो फीलिंग होती है ना, जो चलता है दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बार बचपन का ट्रॉमा होता है। और कभी कभी तो ट्रॉमा भी नहीं होता, छोटी छोटी बातों चीज वो गहरी, जैसे आपने वो मैट्रेस वाला एग्जाम्पल दिया कि चाय अगर ऊपर गिर जाए, अगर चादर आपने साफ कर ली तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैट्रेस के अगर अंदर चला जाता है तो बहुत टाइम लगता है। तो पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, वो बहुत लंबा चलता है कि मेरे को बचपन में मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, पापा ने ऐसा मेरे साथ किया, भाई ने ऐसा किया, टीचर ने ऐसा किया। बहुत बार हम पास्ट को ना बहुत होल्ड ऑन करके रहते हैं, और कभी कभी तो वो इतना अंदर होता है कि वो बैकग्राउंड में चला जाता है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में निकल के आता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते। तो पास्ट के ट्रॉमा को, वो जो होल्ड ऑन करके रखा है हमने, उसको कैसे लेट गो करें?
4: देखिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं थी, अगर आप अब मैच्योर हैं तो समझे कि पेरेंट्स हम नहीं चूज कर सकते, कुछ सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ, हमने कुछ गलत देखा या झेला, ठीक है, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हो गया। अब आप उस दर्द में सदा जीना चाहते हो या हील होना चाहते हो, वो तो आपकी चॉइस है ना। आज उस चीज के साथ क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, पहले तो हुआ क्यों?
3: सही बात है,
4: पहले तो हुआ क्यों? हर एक का जो कर्म है वही किसी ना किसी रूप में लौट करके आता है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज जिस भी जगह पर हमारा जन्म होता है, जैसे लोग हमें मिलते हैं, जो चैलेंजेस और सिचुएशंस हमारे साथ आते हैं, है तो हर एक के ही कर्मों का हिसाब किताब। अच्छे के साथ तो हम नहीं कहते भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया, मुझे लूला लंगड़ा क्यों नहीं पैदा किया, मुझे अंधा बहरा क्यों नहीं पैदा किया, हम तो नहीं कहते, नहीं बोलते ना। और कभी कभी तो शुक्रिया भी नहीं करते कि इतना
3: अच्छा सब कुछ मिला,
4: अच्छा सब कुछ मिला, ठीक है, करना तो चाहिए वैसे तो, पर वो भी मिलता तो क्या है, हमारे ही श्रेष्ठ कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, लविंग फैमिली है, धन का कोई अंदर में संकल्प नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो भी अच्छा कर्म है, पर कुछ अच्छा नहीं था आपके जीवन में, कुछ अच्छा नहीं था तो ये भी है, तो कोई हर आत्मा की अपने पूर्व का ही हिसाब किताब है, हो गया हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे का जीवन कैसे जीना है, आपको उस ट्रॉमा को पकड़ करके रखना है। आपकी ये तो ऐसा आप कह रहे हैं कि आज आपको पता चला कि आपको कैविटी थी, अभी वो रूट में चला गया, अब क्या करें? तो चला गया रूट में, तो रूट से भी तो निकाला जा सकता है ना। अब रूट से निकालने में आपको ज्यादा सेटिंग लगेंगे, कैविटी होती तो एक सेटिंग में हो जाता, रूट से निकालना है तो हो सकता है 6 सेटिंग भी लगे, टाइम ही तो ज्यादा लगेगा ना, निकल नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। पेशेंस और मेहनत से आप हील कर सकते हैं अपने को।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
0: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
6: बिजनेस NJ प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
0: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Let go और give up करने में क्या difference है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब मुझे जानना है सिस्टर श्रेया, लेट गो के सिलसिले में जब हम बात कर रहे हैं, कई बार लेट गो का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है कि हम आसानी से, कुछ लोग होते हैं वो आसानी से लेट गो कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम शायद गिव अप भी कर रहे हैं। लेट गो और गिव अप करने में भी एक फर्क है, राइट?
4: बहुत फर्क है,
3: और वो मुझे समझना है कि ऐसा किसी को मझधार में छोड़ना लेट गो नहीं है, वो गिव अप करना है।
4: लेट गो हम दर्द को कर रहे हैं, गिव अप हम व्यक्ति पर करते हैं।
3: हाँ, सही बात है।
4: लेट गो हम किस चीज का कर रहे हैं? हम उस दर्द का कर रहे हैं जो हमने पकड़ के रखा था, वो जो बिटरनेस का कर रहे हैं, उस रिजेंटमेंट का कर रहे हैं, उस हर्ट और एंगर का कर रहे हैं। गिव अप हम रिश्ते पर गिव अप कर देते हैं। आई गिव अप ऑन यू, आई गिव अप ऑन यू, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता या और नहीं सहन कर सकता। तो आप गिव अप कमजोर की निशानी है, लेट गो शक्तिशाली की निशानी।
3: वाह, क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पावर टू लेट गो और अपनी फेट को एक्सेप्ट करने में क्या डिफरेंस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक किताब है जॉन पुरकिस ने लिखी है, द पावर ऑफ लेटिंग गो। जब इतनी बार हो रही है तो आई थिंक ये जरूर सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें पांच, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और उसमें पांच जो मूल बातें हैं और वो लिखते हैं कि बी प्रेजेंट, ये बहुत जरूरी है, लेट गो ऑफ योर थॉट्स, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में भी सोच सोच के हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। एंड लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू आर। तो आपके अंदर जो ईगो है उसको बहुत निकालना जरूरी है।
4: आपने कहा था ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। आपने कहा कि हम अपने को क्यों नहीं माफ कर सकते, क्योंकि वी डोंट लेट गो ऑफ दैट इमेज कि मैं परफेक्ट हूँ।
3: सही बात है।
4: हम बहुत डरते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, हमें बहुत अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो हमारे से गलती हो सकती है, हमारे से भूलें हो सकती
3: है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue.
7: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट गो करने से हमारा इमोशनल पेन कैसे कम हो सकता है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार लेट गो करने के लिए आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ता है कि यू टेकिंग अ स्टेप बैक, यू चूज नॉट टू एंगेज कि भाई नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, स्थिति डेवलप हो रही है, कोई बात नहीं, मैं स्टेप बैक ले लेता हूँ, इस सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देता हूँ, तो मैं जाने दे रहा हूँ, ये दर्द को जाने दे रहा हूँ। ये कभी कभी कुछ रिश्ते को भी जाने देना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते में मैं रहूंगा तो बहुत दर्द मिलेगा मुझे। वो कभी कभी कमजोरी की निशानी देखी जाती है।
4: हाँ, जब आप रिश्ते को जाने देते हैं तो वो तो कमजोरी की निशानी है। आप रिश्ते को क्यों जाने दे रहे हैं? क्योंकि आप अपने हर्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहे।
3: जी,
4: तो आपको लगता है ये फिर ऐसा करेंगे
3: तो मैं इससे अच्छा निकल ही जाऊँ,
4: इससे अच्छा मैं रिश्ता ही छोड़ दूँ, तो वो वीकनेस की निशानी है। जो हमने पहले भी कहा, गिव अप करना, रिश्ते को छोड़ना, वो कमजोरी है। लेकिन शक्तिशाली जो होगा वो गिव अप, वो रिश्ते पर गिव अप नहीं करता, वो अपने को इतना स्ट्रांग बनाता है कि वो हर्ट नहीं हो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop. Before you reply to another email, एक सेकेंड अपनी लाइफ का सॉफ्टवेयर अपडेट तो कर लो यार. Because मंडे हो या थर्सडे हो, अमेरिका में कोई भी वीकडे हो, देसी प्रॉब्लम्स को हॉलिडे नहीं मिलता है. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है. यहाँ पर कॉफी में कैफीन, बातों में तड़का और मूड में मिर्ची रहती है. और मैं यहाँ पर फिलोसफी सुनाने नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताने आई हूँ कि लाइफ में सब कुछ मिले ना मिले, अगर एक अच्छा गाना मिल जाए जो तुम्हारे मूड से मैच करता हो उस मोमेंट में, तो यार क्या ही कहने. और इसलिए मिर्चीदार बैंगर्स लेकर मैं आती हूँ तुम्हारे लिए हर रोज. अब चाहे तुम मुझे ट्रैफिक से सुन रहे हो या बेड से, चाहे तुम सबवे पकड़ रहे हो या पकड़ रहे हो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और चाहे तुम फ्रिज को तीसरी बार चेक कर रहे हो या पांचवी बार अपना ईमेल चेक कर रहे हो, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली और मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक. नवरात्रि की वाइब्स भी चल रही है, जरा अपने लकी स्टार्स को रेडी रखना, बिकॉज आई हैव गॉट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू. सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, जाकर मुझे देख भी लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. ये तो मैं थोड़ी सी देर में बहुत काम आएगा क्योंकि मेरे पास एक कॉन्टेस्ट है तुम्हारे लिए. और साथ में व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. चलो अब जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ, चेहरे पर स्माइल चढ़ाओ और सुनते रहो प्रिसिला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो। इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। Nine Nights One Divine Spirit
1: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
0: Join daily Garva October 11th to 19th at 7 p.m.
1: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
0: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
2: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर on the Dhanteras Day.
10: Arre, par kaise?
2: Simple. Go to RK Jewels, buy anything and WhatsApp us your purchase receipt to 9033-647244. That is 9033-MIRCHI and be eligible for the lucky pick. 10 ka 10 Dhanteras. Brought to you by RK Jewels. Best quality, best price.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Islin, New Jersey today.
17: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
18: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
3: मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
2: सिर्फ आपको नहीं,
10: मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
20: अरे कहना क्या चाहते हो?
21: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
22: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
23: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
24: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
25: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi. 9 lakh ka haar chal raha hai Mirchi par. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Aur mere saath mein kaun hai? Hello.
2: Hi Priscilla. Good morning. This is Parth.
1: Hi Parth. Good morning. Happy Navratri.
2: You too.
1: So what's happening? Navratri mein kya chal raha hai?
2: Nothing much. Just driving to work. You know. I wish I was back in India right now because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri.
1: Vadodara.
2: Yes.
1: All right. Game show.
2: Majama.
1: All right. मुझे इतना ही गुजराती आता है, but I'm going to ask you the question to for you to enter the next round. Okay. Are you ready?
2: Yes.
1: All right. So are you a 90s kid?
2: Yes.
1: Okay. So this one would be easy for you. Tell me who played the famous villain Mogambo in Mr. India. Quickly.
2: That was Amrish Puri.
1: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
2: Thank you.
1: You've moved to the next round and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
2: all right.
1: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
2: Okay. Sounds all right, good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
1: Oh, my pleasure. Thank you so much.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: हर साल की तरह RK ज्वेल्स फिर से लाया है RK ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
15: The Joy Wali Diwali by Joy Alukas is back.
16: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन। डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स। 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस। मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलकास दिस फेस्टिव सीजन। ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक।
15: TNC अप्लाई। जॉय अलकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
19: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
18: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन एनजे। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
20: चलती हुई कार्स में न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में कैफे, क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
18: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
19: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
21: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
19: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
22: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
23: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
24: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
25: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
24: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
26: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
24: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
27: एक ही होता है।
24: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeetuRaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Har saal ki tarah RK Jewels phir se laya hai RK Jewels Mega Prize. Heere aur Navratna se jada hua 51,000 ka gold necklace. 51,000 ka? Itna hi nahi. 12 watches and 12 diamond rings. RK Jewels, best quality, best price.
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
10: 2108069।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो,
13: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करे 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
17: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
17: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
10: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
20: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर कितना कंफ्यूज्ड है, कितना नहीं पता करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड न्यूज ये है कि सनशाइन है आज, और बैड न्यूज ये है कि कल वाली गर्मी को मिस करने का चांस मिलेगा आज। आज थर्सडे अक्टूबर 15th, टेम्परेचर रहेगा अराउंड 66 डिग्रीज फारेनहाइट तक, विद मोस्टली सनी स्काइज टर्निंग पार्टली क्लाउडी एज द डे गोज ऑन। अभी इट्स अराउंड 55 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन विंड की वजह से फील हो रहा है 52 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि आज के लिए जैकेट को रिटायर नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट से जेंटल ब्रीज चलने वाली अराउंड 5-10 माइल्स पर आवर। इवनिंग में टेम्परेचर 61 डिग्रीज के आसपास रहेगा और रात को गिरकर 55 डिग्रीज फारेनहाइट तक जा सकता है। क्लाउड्स बढ़ेंगे थ्रू आउट द डे, बट रेन का चांस टुनाइट इज जस्ट 10-20%। शावर्स एक्सपेक्टेड है, तो अम्ब्रेला को रेडी रखना, वरना हेयर स्टाइल गड़बड़ जाने लायक तो नहीं रहने वाली है। और अगर बाहर जा रहे हो तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड मेंटेन दैट ग्लो, वेयर योर SPF 50++++, लेयर के प्लेयर बनो, अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करो। एंड लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, मिर्ची चल रहा है मिर्ची नौ लगा हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, जिसमें पार्टिसिपेट करके तुम जीत सकते हो गोल्ड की चेन ऑल थ्रू नवरात्रि। तो फटाफट से नवरात्रि टाइप करो एंड अपने पूरे नाम के साथ भेजो 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर। दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। यहाँ पर तुम्हें नवरात्रि लिखना है, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेजना है। इंस्टाग्राम पर MIRCHIPRIS इज माई हैंडल नेम। फटाफट से खुद को रजिस्टर कराओ एंड देन वेट फॉर माई कॉल, बिकॉज वी आर गोना प्ले अ कॉन्टेस्ट। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। लेट्स फाइंड आउट दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले इलिनॉय के अरोरा में एक हिंदू टेंपल पर अलेजेड मास शूटिंग अटेम्प्ट को पुलिस ने थ्वार्ट कर दिया है। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक 19 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट की गन जैम हो गई और उसके को वर्कर ने पुलिस को अलर्ट किया। सस्पेक्ट पर इंडियंस को टारगेट करने की अलेजेड इंटेंशन का आरोप है। थैंकफुली एक पोटेंशियल ट्रेजेडी को रोका गया। नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई एक अनयूजुअल स्टोरी। आईफोन्स और लग्जरी परफ्यूम बॉटल्स समुद्र में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि यूएई कार्गो शिप माइन स्ट्राइक के बाद सिंक हो गया। कुछ लोग बोट्स में गुड्स कलेक्ट करते हुए दिखाई दिए। एंड लास्टली, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने 91 ईयर ओल्ड डैड सलीम खान के साथ पिक्चर्स शेयर की हैं, कॉलिंग हिम हिज रियल मॉन्स्टर। करियर हो या लाइफ हो, सुपरस्टार सलमान खान भी पापा की एडवाइस लेते हैं। एंड ही शेयर्ड दीज पिक्चर्स विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट। पीछे हो गया सर, पीछे हो गया। फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली।
1: रुकिए,
2: तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
2: ठीक है,
1: बताइए। हरा काट के देख।
2: हरा काट रहा हूँ।
1: धीरे से।
2: 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा
2: है।
1: हाँ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: हर साल की तरह RK ज्वेल्स फिर से लाया है RK ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
11: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
12: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
14: Inefficient,
15: very complex,
16: clumsy or
17: confusion.
18: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
19: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
0: अरे पर कैसे?
19: सिंपल, गो टू RK ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
17: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
14: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
15: Our business was getting ripped off before with processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
20: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
21: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
22: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
21: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
23: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
24: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
23: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
24: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
23: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
25: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
26: Is Diwali, jab apno ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
14: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
27: Tera kya hoga, Kalya?
28: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
27: Ab mirchi kha.
29: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Kya naam hai? Hello.
2: Hello, hi.
1: Hi, what's your name?
2: Hi, my name is Deepthi.
1: Hi, Deepthi. How are you doing today?
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: गुड गुड, इट्स गोइंग ग्रेट.
1: ऑलराइट, कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ.
1: अरे वाह, लखनऊ से हैं. तो लेट मी आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली.
2: या या,
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? विद इन सेकंड्स यू हैव टू आंसर कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल.
2: इट्स टाइगर.
1: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. Move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: Oh, kudiyo, gudikin.

0: presented by Virani Jewelers.
1: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग मिर्ची में चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लख का हार जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन. लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है. हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय व्हाट्स योर नेम.
2: हाय माय नेम इज दीप्ति.
1: हाय दीप्ति हाउ आर यू डूइंग टुडे.
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: Good, good. It's going great.
1: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ.
1: अरे वाह लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
2: Yeah, yeah.
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना ठीक है. Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
2: It's a tiger.
1: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
4: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट.
6: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
7: हर साल की तरह RK ज्वेल्स फिर से लाया है RK ज्वेल्स मेगा प्राइस. हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का. इतना ही नहीं 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. RK ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
8: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार.
9: 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
11: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन.
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
13: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
14: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
13: Wait, they can see us on Sunday?
14: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
0: चलती हुई कार्स में न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में.
15: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी.
0: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद RK Jewels ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस. गो टू RK Jewels, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244. दैट इज 9033 मिर्ची एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक. 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
11: की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: प्रिसिला सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर और नवरात्रि स्पेशल कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स और इसमें नवरात्रि की हर रात को तुमको मिल रहे हैं स्पेशल गोल्डन चांस टू विन गोल्ड का चेन एंड ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि अगले कंटेस्टेंट हमारे साथ लाइन पर है लेट्स सी कौन है हमारे साथ हेलो
2: हाय प्रिसिला दिस इज शशांक
1: हाय शशांक हाउ आर यू
2: वेरी वेरी गुड हाउ आर यू
1: I'm great. मुझे बताइए नवरात्रि कैसी जा रही है
2: बहुत अच्छी जा रही है आई एम इन छोटा सा टाउन इन इन फ्लोरिडा और यहाँ पे वी जस्ट हैड अ गरबा ऑर्गेनाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 3 or 4 years. तो हम सब गए थे दिस वीकेंड एंड इट वाज सो मच फन
1: वाओ दैट्स अमेजिंग तो गरबा का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है आपका
2: एक्चुअली सही बोलू तो खाना वहां पे ऑथेंटिक इंडियन खाना विद द इंडियन कम्युनिटी बस वो अलग ही मजा आता है ऑब्वियसली नवरात्रि रिलेटेड खाना रहता है लेकिन दो ताली आई एम लर्निंग न्यू स्टेप्स बाकी नए लोगों से मिलना आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कम्युनिटी जो दैट आई रियली लाइक अबाउट द होल गरबा नवरात्रि
1: एंड आई मस्ट से कि जो हमारा कंट्री इंडिया उसके फेस्टिवल्स जो है हर एक फेस्टिवल का अपना अलग ही एक चार्म है
2: अरे बिल्कुल आई मीन इट्स कलरफुल इट्स वाइब्रेंट और एनर्जेटिक आई थिंक हमारे फेस्टिवल में एनर्जी बहुत होती है जो होली हो कि दिवाली हो एंड आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: ऑलराइट तो चलो जल्दी से मैं अपना सवाल पूछती हूँ सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट मिर्ची 9 लाख का हार अभी ध्यान से सुनना है मेरा सवाल और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करना है आर यू रेडी
2: यस आई एम
1: सो मेरा सवाल शशांक आपसे ये है ध्यान से सुनिएगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान
2: येन येन जापानीज येन
1: जापानीज येन इज द करेक्ट आंसर
2: अरे वाह थैंक यू सो मच प्रिसिला
1: कांग्रेचुलेशंस हैप्पी नवरात्रि टू यू थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
3: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
2: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
3: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
4: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
9: बिजनेस NJ presents दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
10: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
16: Listener MA, back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है ब्रिसिला और आप सुनने वाले हो गोल्ड रेट अपडेट.
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,155. $4,155 पर गोल्ड के प्राइस आज ट्रेड कर रहे हैं जब हम आने वाले वीकेंड पे राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, पैम्प स्विस गोल्ड बार, एवरीथिंग अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. इस धनतेरस दिवाली पुष्य नक्षत्र में गोल्ड में सेलिब्रेट करने के लिए आइए, इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएं, राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे कनेक्ट करो इंस्टा एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. टाइम फॉर द मिर्ची दैट बैंगर्स ओनली फॉर यू. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for some updates from around the world with me, Priscilla, on Mirchi Mornings.
2: Mirchi, our gun 3.
1: सबसे पहले हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में इंडिया 84th स्पॉट पर पहुंच गया है. सिंगापुर टॉप्स द लिस्ट विद वीजा फ्री एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशंस. नंबर 2 पर कोलकाता फ्लाईओवर का मेकओवर हुआ है. चिंगरी घाटा फ्लाईओवर के रेनबो कलर्ड पेंट पर बाइकर्स के फिसलने का वीडियो सामने आया और ओवरनाइट चेंजेस किए गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं. ब्यूटी इज फाइन, लेकिन रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्टली, सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और रिपोर्टेडली सिर्फ एक अकाउंट अपनी वाइफ करीना कपूर खान को फॉलो किया है. करीना ने भी इस जेस्चर पर एक वायरल पोस्ट लाइक की है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवका 3 विद मी प्रिसिला. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rambana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Mirchi, Burga.
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो,
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा पेशाब लूट रहे हो आप।
2: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: है तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन।
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
3: मैं निकलवा लूंगा,
2: ठीक है?
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं, पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
10: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
11: अरे पर कैसे?
10: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033-647244. That is 9033 Mirchi and be eligible for the lucky pick. 10 ka 10 Dhanteras, brought to you by RK Jewels. Best quality, best price.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka haar. Presented by Virani Jewelers.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर हो रही है गोल्ड चेन की बरसात, और अगर तुम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नवरात्रि टाइप करके 9033 मिर्ची पर अभी के अभी भेजो, जैसे कि हमारे अगले कंटेस्टेंट ने भेजा है। मेरा नाम है प्रिसिला और चल रहा है मिर्ची नौ लक का हार, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स, ओनली ऑन मिर्ची। लेट्स सी हमारे साथ कौन है। हेलो,
2: हाय, हेलो, दिस इज द्वानल।
1: व्हाट्स अप?
2: गुड गुड, हाउ अबाउट यू?
1: I'm great. Thank you so much for asking. Happy Navratri.
2: Same to you as well.
1: So, kya chal raha hai Navratri ki? Kya taiyariyan chal rahi hai?
2: Aarti, we have been to Garba already. It's been amazing. Navratri is one of my favorite festivals. So.
1: Yes. And ab to festival ka season hi chal raha hai. And let's see ki aaj aapka din banta hai ki nahi banta hai. Main jaldi se ek sawal puchne wali hu aapko, quickly उसका आंसर करना है, ठीक है?
2: ठीक है।
1: जीके से रिलेटेड सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपसे। टेल मी विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड?
2: पैसिफिक ओशन।
1: पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस वनल।
2: थैंक यू।
1: आप अगले राउंड में पहुंच गए हो, बधाई हो आपको। आज आपका दिन बहुत अच्छा था, आपका लक चमक गया आज के दिन। सो
2: कांग्रेचुलेशंस। लुक्स लाइक इट, वेरी गुड। Thank you.
1: Congratulations and thank you so much for participating.
2: Thank you so much. Thank you for calling.
0: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.
3: Kudi kendi baby pehla jaguar le lo, phir jinna marzi pyaar le lo.

0: medical doctors.
1: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
2: Virani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन. इट्स डैम एक्साइटिंग. एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब. मैं हूँ Priscilla on Mirchi Mornings. Let's see who's online with me. Hello.
3: Hi, Priscilla.
2: Hi, what's your name?
3: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
2: Hi, Preet. What's up?
3: Everything is good. How are you doing?
2: I'm great. So are you ready to play Mirchi 9 lakh ka haar and azmao your luck?
3: Sure, why not?
2: Are you nervous?
3: No.
2: All right, that's great. Nervous hone ki koi baat hi nahi hai. Main bahut hi jaldi ek sawal puchne wali hu. And ab uska jawab aapko dena hai bahut dhyan se sunkar. All right, are you a movie buff?
3: Yes.
2: All right, so mujhe batao ki which feature film has the dialogue kitne aadmi the?
3: Chole.
2: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
3: Thank you.
2: It was easy, right?
3: Yeah, it was very easy.
2: All right, so ab aap next round mein chale gaye ho. नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए.
3: थैंक यू. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
2: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
3: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल दैट पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.
2: ओके, ऑलराइट.
3: वी डोंट सेलिब्रेट बट वी टेक पार्ट इन, वी जॉइन फ्रेंड्स.
2: ग्रेट, ग्रेट. आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Har saal ki tarah RK Jewels phir se laya hai RK Jewels Mega Prize. Heere aur Navratna se jada hua 51,000 ka gold necklace. 51,000 ka? Itna hi nahi, 12 watches and 12 diamond rings. RK Jewels, best quality, best price.
9: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
11: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
12: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
13: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
1: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे, क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में.
8: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी.
1: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस. गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक. 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
14: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab mirchi kha.
20: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, before you check your bank balance, let's check your राशि का क्या कहना है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings.
2: Mirchi राशि zone.
1: It is यानी मेष राशि. बॉस एनर्जी ऑन करो, पुरानी टेंशन को साइड रखो और पूरी टू डू लिस्ट जो है आज ही खत्म करने के चक्कर में खुद को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मत बना लेना. लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी वृषभ राशि, मनी मैटर्स में प्रैक्टिकल रहना, छोटी डिटेल्स में इतना मत उलझो कि अपने पॉइंट ही मिस हो जाए. और कोई पुराना दोस्त कॉल करे तो पिकअप, हर अननोन नंबर स्पैम नहीं होता है. लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आइडियाज का वाईफाई फुल सिग्नल पर है, न्यू प्लान्स बना, बस इम्पल्सिव डिसीजंस को एयरप्लेन मोड पर रखो. पार्टनर से बात करते वक्त सिर्फ रिप्लाई नहीं बल्कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, घर करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मैनेज कर सकते हैं, बस शॉपिंग कार्ट को अपना थेरेपिस्ट मत बना लेना. थोड़ा सा मूवमेंट करो और इवनिंग में रेस्ट भी जरूरी है. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, स्पॉटलाइट इज कॉलिंग माय डार्लिंग, क्रिएटिव आइडियाज को दुनिया के सामने लाओ, अपनी टैलेंट की मार्केटिंग करो, बस बड़े बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले कैलकुलेटर को थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना. लकी कलर इज मेरी गोल्ड येलो, लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, बजट चेक कर लो बस. कॉफी, कन्वीनियंस बायस और रैंडम ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलके वॉलेट का साइलेंट ब्रेकअप करवा सकते हैं. लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 4. लीब्रो यानी तुला राशि, आज तुम्हारी पर्सनैलिटी का चार्म फुल पावर पर है, बस सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना लंच ब्रेक का बजट सैक्रिफाइस मत कर देना. रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन है, गेसिंग गेम छोड़कर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो. लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इंट्यूशन स्ट्रांग है तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, लेकिन हर बात को डिटेक्टिव केस भी मत बना देना. जो कहना है कामली कहो, इंटेंसिटी का वॉल्यूम थोड़ा सा कंट्रोल में रखो. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, पॉसिबिलिटीज वाइड है, किसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आस्क करना है तो प्रेपरेशन के साथ साथ आगे बढ़ो. बस कैलेंडर में इतने कमिटमेंट्स मत भर देना कि खुद से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़े. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फ्यूचर प्लानिंग का मूड है परफेक्ट, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो और पास्ट की टेंशन को प्रेजेंट का लैंडलॉर्ड मत बनने दो. रिलेशनशिप्स में ग्रैंड जेस्चर्स से ज्यादा स्मॉल काइंडनेस काम आने वाली है. लकी कलर इज ब्लैक, लकी नंबर इज 10. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, न्यू आइडियाज, न्यू कनेक्शंस, न्यू पॉसिबिलिटीज, वर्क पार्टनरशिप्स को स्ट्रांग करो और बजट को भी मीटिंग में बुलाओ. घर वालों से अपनी बात को क्लियरली शेयर करो, दे मे बी मोर सपोर्टिव देन यू थिंक. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक वायलेट, लकी नंबर इज 11. पाइसीज यानी कि मीन राशि, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन दोनों का कॉम्बो रेडी है. दिल से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, बस ट्रैवल बुकिंग्स और टाइमिंग्स डबल चेक कर लेना. रोमांस में परफेक्ट वर्ड्स से ज्यादा जेन्युइन फीलिंग्स मैटर करती हैं. लकी कलर इज सी फॉर्म ग्रीन, लकी नंबर इज 12. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. स्टे विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ओए होए मेरे देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। लेकिन अब शो खत्म हो रहा है और मेरी तरफ से तुम्हारी किस्मत का एंटरटेनमेंट जो है वो भी बाकी है। अब तुम पूछो कि कैसे, टाटा बाय बाय कहने से पहले एंड बिफोर आई गो तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्ची के साथ कुछ लकी विनर्स को मिल रही है गोल्ड चेन्स। यस, नवरात्रि के पूरे सीजन में लकी चेन्स जीत सकते हो तुम कर्सी वीरानी ज्वेलर्स, क्योंकि मिर्ची पर चल रहा है 9 लाख का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। 9 नवरात्रि नाइट्स है और तुम्हारे चांसेस काफी ब्राइट हैं जीतने के गोल्ड की चेन। पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। पहला काम ये करो कि व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, अपना पूरा नाम लिखकर भेजो 9033647244 पर, या फिर तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। यहाँ पर लिखो नवरात्रि, अपना पूरा नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेज दो। फटाफट से अपने आप को रजिस्टर करो एंड ओकट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स के फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स भी जाकर चेकआउट करो। 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर वहां पर ढेर सारे फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, या फिर ऑनलाइन विजिट करो virani.jewelers.com पर। अभी फिलहाल मेरे जाने का टाइम है, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, खाओ पियो ऐश करो, और मुझे मिस करोगे तो कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया। एंड अभी मिर्ची सुनते रहो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana, cabana. Burga, burga. La virtua, la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
3: वो ये मेमोरी पहचानना बतानी है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन, तू ये बता।
3: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल अपनी में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पॉटर।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
9: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
8: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
9: वी आर ओपन 7 days a week इंक्लूडिंग संडे। The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026 and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
11: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
12: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले 2 साल पिछले 2 साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
15: पेड फॉर बाय देसी ब्लू, desiblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
16: इस इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
17: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
18: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूं, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहां अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903364724। दैट्स 90

0: 33 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट वीरानीज्वेलर्स.com.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest-running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: चलती हुई कार्स में न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में
5: धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी
4: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस गो टू आरके ज्वेल्स बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244 दैट इज 9033 मिर्ची एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और अच्छा।
0: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
3: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल।
0: क्या बात। धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात। अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?
3: हाँ, वही पहले वही आता है।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल की
0: ओके, पता है। कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्मची।
3: थैंक यू श्रुति।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल कि मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
3: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
4: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट mythreeusa.org।

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
6: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: Here's something you won't want to miss. A beat of our own. A brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community. And a story about finding common ground when it matters most. Catch a beat of our own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
12: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
13: अरे पर कैसे?
12: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है आप?
3: जी।
0: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है।
3: ZNMD
0: में पिंक फोन कौन चलाता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: काफी म्यूजिकल हैं आप। कभी खुशी कभी गम में कह दिया बस कह दिया कौन बोलता है?
3: अमिताभ जी।
0: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
3: मोहब्बतें
0: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल
0: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर
0: किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
3: कौन से बने हैं?
0: पापा पगलू।
3: एनिमल
0: में अबरार कौन है?
3: कौन है? बॉबी देओल
0: की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
3: अजनबी।
0: क्या बात, अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
3: करीना कपूर
0: की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
3: रावण।
0: हाँ जी, रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
3: वीर जारा
0: में उनकी डिफेंस लॉयर कौन है?
3: रानी मुखर्जी
0: की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
3: तारा रम्पम।
0: आपने भी गेम एकदम तारा रम्पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर DM करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची।

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है, या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो, ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश, बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू, ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल, ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी, बट इन अ वाइल, अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहा है मेरा भी।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन।
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
3: ठीक है मैं निकलवा लूंगा और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
6: Har saal ki tarah RK Jewels phir se laya hai RK Jewels Mega Prize. Heere aur Navratna se jada hua 51,000 ka gold necklace. 51,000 ka? Itna hi nahi. 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: जो गाना तारा तबीला तारा रंगीला तारा रंग
5: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
11: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
5: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
11: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
13: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
14: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
13: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, हमारे घर पे।
15: इटाल मोड फर्नीचर 685 न्यू जर्सी 17 साउथ परामर्स न्यू जर्सी और शॉप ऑनलाइन एट italmodfurniture.com एंड हैव इट डिलीवर्ड एनीवेयर इन द यूएस।
16: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
17: अरे पर कैसे?
16: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में, अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। सो ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला है जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
2: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
3: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइस. हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: इट्स 2 AM. हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
5: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days Pediatrics. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ. वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
4: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
5: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 years of experience. The family owned automotive center providing top notch services by ASE certified technicians. Visit Raj Auto Center at 1400 Jersey Avenue, North Brunswick Township, 1213 New Jersey 27, Somerset. Auto Body Shop, 700 Harris Ave, Middlesex. If you're with Raj Auto Center, you're in good hands.
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
12: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
13: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में.
3: धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी.
13: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद RK Jewels ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस. गो टू RK Jewels, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033-647244. दैट इज 9033 मिर्ची एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक. 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सर्फेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं फूल और जया, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है, जहां फूल का इनोसेंस और जया की एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट मिसेस। ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है, शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
6: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Sirf aapko nahi, Mirchi ke sang ab pure 9 lakh winners ko milega 9 gold chains.
14: Are kehna kya chahte ho?
15: Kyunki is navratri Virani Jewelers lekar aaya hai Mirchi Navratran haar.
13: 9 navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain 1 precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp navratri to 9033647244. That's 9033 Mirchi aur taiyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
16: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit VaraniJewelers.com.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची, मिर्ची, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप, टॉप, ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9 सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्ति शालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्ति शालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हेलो वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ, मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
3: सर?
4: एक लाल एक हरा, कौन से काटू सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट।
3: पीछे हो गया।
4: फिर कटेगा कैसे?
3: भारी सामान
4: तो नहीं है सर।
3: रंग बता।
4: एक लाल एक हरा।
3: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
4: कैंची ले ली सर।
3: रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दे रहा है।
4: लेकिन सिचुएशन है
3: आसपास
4: है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
3: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
4: ठीक है।
3: हरा काट के देख, धीरे से।
4: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
3: ताली बज रही है, कौन है?
4: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा
4: है।
3: हाँ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
7: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
8: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइज। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
10: द जॉय वाली दिवाली बाय जॉय आलुकास इज बैक। And as always, it is the biggest and best deal in town on jewelry purchases this festive season. Get free 24-karat gold bars and cash vouchers on diamond and precious stone jewelry purchases. Pay zero making charges on 8-gram 22-karat gold coins. Much more awaits you at Joy Alukas this festive season. Offers valid until 8th November 2026. TNC apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
11: So gala tara, tabila tara. रंगीला तारा रंग
12: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
13: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: Here's something you won't want to miss, A Beat of Our Own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch A Beat of Our Own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
19: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
20: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
21: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
22: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
23: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
22: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
24: तेरा क्या होगा कालिया?
25: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
24: अब मिर्ची खा।
26: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर ना।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो एनएन सिप्पी जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म दैट ही इज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त एनएन सिप्पी ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं मुरत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 nights को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन। लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं। हेलो,
3: हाय प्रसला।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: माय नेम इज जिनाल।
2: जिनाल, हाउ आर यू?
3: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
2: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
3: Okay.
2: All right. So are you ready?
3: Yeah. Happy Navratri.
2: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
3: Okay, sure. I'll try.
2: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली।
3: अर्शद द्वारसी।
2: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। ये।
3: या वेरी एक्साइटेड। या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन। आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड।
2: ये, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है। सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर। ओके,
3: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला।
2: ऑलराइट, बाय बाय।
1: मिर्ची 9 lakh का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: ओह नो,
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 lakh विनर्स को मिलेगा 9 gold chains।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
11: 9 navratri nights, 9 golden opportunities, हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Veerani Jewelers
13: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22-carat gold and diamond jewelry. Visit VeeraniJewelers.com.
14: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: हाँ हाँ,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी, फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: हर साल की तरह RK ज्वेल्स फिर से लाया है RK ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का, इतना ही नहीं 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
7: धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
6: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद RK ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू RK ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

मान। लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th August 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज़ दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में। वेल, डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Milci.
1: Buscabana, sacabana, rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवो का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन? तू ये बता।
3: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इट्स

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
8: अरे पर कैसे?
7: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

18 साल लगे इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। आप उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता, ऑल ऑफ दैट। दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन। इट्स डैम एक्साइटिंग। एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब। मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। लेट्स सी हु इज ऑन लाइन विद मी। हेलो।
3: Hi, Priscilla.
2: Hi, what's your name?
3: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
2: Hi, Preet. What's up?
3: Everything is good. How are you doing?
2: I'm great. So are you ready to play Mirchi No Luck Ka Haar and Aazmao Your Luck?
3: Sure, why not?
2: Are you nervous?
3: No.
2: All right, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर। All right, are you a movie buff?
3: Yes.
2: All right, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
3: शोले।
2: शोले is the correct answer. Congratulations, Preet.
3: Thank you.
2: It was easy, right?
3: Yeah, it was very easy.
2: All right, so अब आप next round में चले गए हो। नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए।
3: थैंक यू, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर।
2: या कैसे जा रही है नवरात्रि?
3: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज़ दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल दैट पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड।
2: ओके, ऑलराइट,
3: वी डोंट सेलिब्रेट बट वी टेक पार्ट इन, वी जॉइन फ्रेंड्स।
2: ग्रेट ग्रेट। आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
6: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइज। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: नवरात एक स्पिरिट।
8: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे मा
7: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
8: तारीख 18 ना रोज आठम यज्ञ, 19 नौम यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट GayatriCenter.org टुडे।
9: दीवाने
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
13: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
1: बिजनेस NJ presents दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
12: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Here's something you won't want to miss, A Beat of Our Own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch A Beat of Our Own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
8: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
9: Listener, am I? Back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la burga, burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi burga.
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा टेस्ट कैसे करते हैं ये?
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा पेशाब लूट रहे हो आप।
2: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: नहीं तो मेरा यूरिन
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
3: मैं निकलवा लूंगा।
2: ठीक है
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक
0: है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस, 51,000 का। इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Nine nights, one divine spirit.
13: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
12: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
13: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
12: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइन्स एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
7: अरे पर कैसे?
6: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें। किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट, तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए एनएन सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड Right opposite none other than Kaka, yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe. Main hoon Shreya. Come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: ऑलराइट, वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार खेल रहे हैं हम। मैं बोले तो प्रिसला, मेरे साथ लाइन पर हमारे अगले कंटेस्टेंट है। हेलो,
2: हाय
1: हाय, व्हाट्स अप?
2: या आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम ग्रेट।
2: माय नेम इज सची।
1: हाय साची, क्या चल रहा है?
2: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है।
1: ऑलराइट, कैसे जा रही है नवरात्रि? मजा आ रहा है?
2: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है।
1: आई नो, फेस्टिवल के टाइम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग। लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी, अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लगता हार।
2: ओके,
1: ऑलराइट। सो साची, क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना। मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल।
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। ये सची।
2: या थैंक यू सो मच।
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो। हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की।
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Lagga Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ki abhi, and you could be the next participant in Mirchi No Lagga Haar.
0: Mirchi No Lagga Haar presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
0: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो डायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइस। हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: दीवाने।
1: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
6: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
7: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
8: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे, क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
9: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
10: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033-647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
15: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
14: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
16: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
17: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
18: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
19: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
19: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
20: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
21: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
22: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
21: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan एक ही होता है।
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
21: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। यार जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्सडे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: हेलो
3: हाँ बेटा, बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवो का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन, ये बता।
3: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई, तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
7: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
16: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
17: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: द जॉय वाली दीवाली by Joy Alucas is back. जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन। डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स। 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस। मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलकाज दिस फेस्टिव सीजन। ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक।
20: TNC apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
21: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6666.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, it's hot.

बॉलीवुड कैरेक्टर्स से ना लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और किसी को ना गीत की एनर्जी पसंद है, तो किसी को बनी का एडवेंचर, तो किसी को पो का एटीट्यूड। तो आज ना एक स्नैक पर्सनालिटी टेस्ट भी कर ही लेते हैं। मतलब अगर आपको चीजें सिंपल और क्लासिक पसंद है तो यू आर प्रोबेबली नेचुरल। थोड़ा शार्प सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड है तो ब्लैक पेपर। और अगर लाइफ में थोड़ा ड्रामा, थोड़ी हीट और थोड़ा ब्रिंग इट ऑन चाहिए तो रेड चिली गैंग आई कैन सी यू। मतलब मूवी चल रही हो, फ्रेंड्स के साथ बॉलीवुड गॉसिप हो, या जर्सी की ड्राइव थोड़ी लंबी, एक क्रंची स्नैक का पैकेट खुलता है और हाथ ऑटोमेटिकली उसमें वापस चलना ही जाता है। और इन तीनों मूड्स के लिए दीप चिप्स, नेचुरल ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेवर्स, यानी अपना कैरेक्टर चूज कीजिए एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट तो कंप्लीट हो गई, अब देखते हैं अगला बॉलीवुड गाना आपके कैरेक्टर से मैच करता है या नहीं। ऑन योर मिर्ची इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi. 9 lakh ka haar chal raha hai Mirchi par. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Aur mere saath mein kaun hai? Hello.
2: Hi Priscilla. Good morning. This is Parth.
1: Hi Parth. Good morning. Happy Navratri.
2: You too.
1: So what's happening? Navratri mein kya chal raha hai?
2: Nothing much. Just driving to work. you know. I wish I was back in India right now because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri
1: in Gujarat. Vadodara.
2: Yes.
1: All right. Game show.
2: Majama.
1: All right. मुझे तो गुजराती आता है, but I'm going to ask you the question to for you to enter the next round. Okay. Are you ready?
2: Yes.
1: All right. So are you a 90s kid?
2: Yes.
1: Okay. So this one would be easy for you. Tell me who played the famous villain Mogambo in Mr. India. Quickly.
2: That was Amrish Puri.
1: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
2: Thank you.
1: You've moved to the next round and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
2: all right.
1: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
2: Okay. Sounds good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
1: Oh, my pleasure. Thank you so much.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस 51,000 का इतना ही नहीं 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो ऐसा कैसे
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक पूजा आरती भोग सिंदूर खेला कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी
8: October 24th and 25th Hammerhold Upper Elementary School East Brunswick New Jersey register today at maitriusa.org
9: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस फॉर ऑर्डर्स विजिट rajbhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को
10: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है
11: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
13: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
15: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
16: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन
18: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं और हर दिन वीजा ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
19: Wait for by Desi Blue, DesiBlue.org, not authorized by any candidate or candidates committee.
20: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
21: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
22: अरे कहना क्या चाहते हो?
23: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
21: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
24: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
25: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
26: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
27: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
26: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

बॉलीवुड का एक ऐसा काउच जहां बैठने के बाद सेलिब्रिटीज को अपने आंसर से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन संभालने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वो देखकर क्या हो जाए उनके साथ। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है कॉफी विद करण की, जिसका अगला सीजन सीजन 9 आने वाला है। और कहां जा रहा है कि ये तो फाइनल सीजन होने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यार इतने सालों से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस काउच पर आ रहे हैं। नॉट जस्ट बॉलीवुड, बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज, एंड ऐसे सारे एपिसोड्स तो धमाकेदार रहे ही है। तो कभी रैपिड फायर में कुछ फनी आंसर्स, तो कभी अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, कभी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री, तो कभी एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो यार अगले दिन पूरे इंटरनेट की हेडलाइन ही बन जाता था। लेकिन मुझे इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगती है कि उसका जो रैपिड फायर राउंड होता था, ओ हो, कोई भी बड़ी सीरियल जो आती थी ना जिसमें एकदम कलेश होता था, उससे ज्यादा कलेश उस रैपिड फायर राउंड में होता था। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सेलिब्रिटीज को बहुत ही कम सेकंड्स मिलते थे, और कुछ बहुत ही खतरनाक जवाब बाहर आते थे। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप भी करण जौहर के उसी काउच पे हो, और वो पूछते हैं वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी यू वुड लव टू हैव कॉफी विद, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे जरूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कॉफी के साथ बॉलीवुड गॉसिप तो हो गई, तो चलिए बॉलीवुड म्यूजिक की बारी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
8: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Islin, New Jersey today.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती।

0: destination. Fashion Queen.
1: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
2: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइन्स एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
3: अरे पर कैसे?
2: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Happy Navratri New Jersey, मैं हूँ आपकी मर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों देखिए नवरात्रि की यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां हमारी शुरू तो हो ही चुकी है, उसी के साथ साथ आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार नवरात्रि इज वेरी स्पेशल विद मिर्ची 9 लाख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, यानी लकी विनर्स जीतेंगे गोल्ड चेन। तो देखते हैं आज कौन ऐसे लकी पार्टिसिपेंट है जिनके हाथ आ सकता है गोल्ड चेन। तो चलिए मेरे साथ है आज कॉल पर अतुल अहुजा। हेलो अतुल।
2: Hey Siddhi, how are you?
1: I'm doing good, how are you?
2: Very good, thanks.
1: तो अतुल क्या आप सोने की चेन जीतने के लिए तैयार हो?
2: बिल्कुल
1: तो चलिए आपके लिए जो सवाल है मेरे पास बहुत ही आसान सा सवाल है कि अपने जो नवरात्रि है ना उसमें इतने सारे गाने हैं, उसका एक बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है नगाड़े संग ढोल बाजे, इसकी जो ओरिजिनल सिंगर है वो कौन है?
2: इसकी ओरिजिनल सिंगर ओके लेट मी गेस, ये गुजराती एक सिंगर है, मैं नाम ट्राई कर रहा हूँ याद करने का।
1: गुजराती सिंगर?
2: हाँ, आई थिंक कोई इंटरनेशनल में भी आई थी बट आई थिंक उसके बाद ओरिजिनल सॉन्ग श्रेया घोषाल ने इसको रिकॉर्ड किया था।
1: आप गुजराती सिंगर से इंडियन आइडल से श्रेया घोषाल पे गए हो, देखिए आपको ये गाना फिर से सुनना पड़ेगा आफ्टर दिस, बट श्रेया घोषाल इज राइट। तो जी हाँ, श्रेया घोषाल का गाना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ श्रेया घोषाल। तो इसके बाद मैं आपके लिए यही गाना बजाने वाली हूँ, आप अच्छे से सुनना। यस दैट इज श्रेया घोषाल, आपका गेस भी सही था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए एंड मैं आपको बोलूंगी इस बार जब आप फाइनल राउंड के लिए आओगे तो सारे गाने एक बार अच्छे से सुन के आना रेडियो पर ही।
2: बिल्कुल सुन के आऊंगा।
1: चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन अतुल, और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची 9 लाख का हार तो जल्दी से टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 9033647244 या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi और अपनी नवरात्रि की शॉपिंग कीजिए विरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर ऑन ओकली रोड इजलिन न्यू जर्सी, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

वैसे तो फोन में हजारों रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन बचपन के कुछ बर्थडेज ना आज भी बिना नोटिफिकेशन के याद रहते हैं। शाम शाम तक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज है थ्रो बैक थर्सडे। और याद आ रहा है वो बचपन वाला दोस्त जिसके बर्थडे की डेट ना आज भी दिल को याद है। तब तो ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम रिमाइंडर, ना गूगल कैलेंडर। बस याद रहता था कि किस दिन स्कूल में टॉफी मिलने वाली है, उसके घर जाना, बलून्स फोड़ना, और रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। और शायद इसीलिए ना बचपन के जो बर्थडेज होते थे सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं थे, वो पूरे इवेंट्स हुआ करते थे। क्योंकि आज लाइफ चाहे कितनी भी बिजी हो गई हो, मतलब ये सारे मीटिंग्स के रिमाइंडर्स याद रखने पड़ते हैं, लेकिन वो एक दोस्त का बर्थडे और उसके घर की वो केक की स्मेल, ओ हो, आज भी मेमोरी से डिलीट नहीं होती। तो आज थ्रोबैक थर्सडे पे एक छोटा सा काम कीजिए, अगर वो दोस्त आज भी टच में है तो बिना किसी रीजन के एक मैसेज भेज दीजिए कि याद है तेरा बर्थडे है वो बचपन वाला। तो हो सकता है कि क्या उसके दिन की ये सबसे प्यारी नोटिफिकेशन ही बन जाए। और इसी नॉस्टैल्जिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अगला गाना उन दोस्तों के नाम जो शायद रोज बात ना करे लेकिन यादों में हमेशा साथ होते हैं। राइट हियर मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nechi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Nechi, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा. कौन सा काटू सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट.
2: पीछे हो गया.
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर.
2: रंग बता.
3: एक लाल, एक हरा.
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
3: कैंची ले ली सर.
2: रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दे रहा है.
3: लेकिन सिचुएशन है.
2: सोच रहा हूँ. कोई भी नहीं है
3: आसपास, है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
2: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
3: हाँ, बिल्कुल.
2: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
3: ठीक है.
2: हरा काट के देख. धीरे से.
3: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशन.
2: ताली बज रही है. कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा
3: है.
2: हाँ.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
6: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रांसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइज, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
10: मुझे नौलखा मंगा दे रे दीवाने।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
14: डोंट वरी, आई एम कांटेक्टिंग 7 डेज पीडियाट्रिक्स। दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
13: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
14: वी आर ओपन 7 डेज अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग एरियाज फॉर द लास्ट 25 years। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट बुकिंग ऑनलाइन एट 7dayspediatrics.com। विजिट 7dayspediatrics.com और कॉल 732-548-3210।
15: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
16: अरे पर कैसे?
15: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033-647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
12: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि लक का नहीं प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
8: जय जयराम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज, गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम।
16: Soon it will start getting a little cooler, and today the US markets are mixed. For most people, owning a home is like moving a step up the American dream ladder. It is indeed wise of you to buy a home instead of continuing to pay hefty rents. Your home is an excellent investment in the long run because it helps you not only build up an equity but also garner substantial tax breaks. There are certain deductions that can be claimed by homeowners only. And consider this deduction as Uncle Sam's gift to you. So once again, listeners, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7%. 20-year fixed mortgage rate, 6.875%. 15-year fixed mortgage rate, 6.5%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. Remember, listeners, Lion Mortgage has been helping the community for 20-plus years. We offer an array of loan products like conventional loans, DSCR loans, great rates on jumbo loans. We also offer bank statement loans, P&L loons, also offer one-year buy-downs. You name it, and we have that program. We offer the most competitive mortgage in the rates in the industry. So once again, friends, buying a dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
20: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
21: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना प्लेन से देखा था
22: शशि वो मैनहट्टन है
21: मैन हैटन
23: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
22: टैन मतलब वो धूप की छाप

0: presented by Virani Jewelers.
1: ऑलराइट मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं मुरत प्रिसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगली कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रिसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद्वारसी.
1: अर्शद्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर. ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
5: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस. हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. 9 nights, 1 divine spirit.
6: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
7: Join daily Garva October 11th to 19th at 7 p.m.
6: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
7: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
8: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सिया दीवाने.
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
7: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
12: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन. ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर. कंडीशंस अप्लाई.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6444.

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
0: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
9: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
0: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद RK Jewels ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू RK Jewels, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033-647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हैप्पी नवरात्रि न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस नवरात्रि की धूम में। दोस्तों देखिए, नवरात्रि की धूम तो जोरों शोरों से यहाँ पर शुरू है क्योंकि मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स दे रहा है सोने की चेन्स टू लकी विनर्स। और आज हमारे साथ सोने की चेन जीतने के लिए जो कॉलर है उनका नाम है बबीता जी। नमस्ते बबीता जी।
2: नमस्ते नमस्ते,
1: हैप्पी नवरात्रि बबीता जी। आपकी नवरात्रि की तैयारियाँ कैसे चल रही है?
2: चल रही है बस रोज टांगे खेलने जाते
1: हैं। क्या बात है, कोई मिठाई विठाई खाते हो कि नहीं आप?
2: मिठाई तो चल रही है ये।
1: चलिए, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है नवरात्रि स्पेशल?
2: नवरात्रि स्पेशल तो मेरी हलवा, मूंग दाल का हलवा।
1: क्या बात है, मूंग दाल का हलवा मेरा भी बहुत फेवरेट है। और मैंने सुना आपने पहले शायद मोदक बोला।
2: नहीं, मोदक गणपति का हो गया ना।
1: जी जी, बट देखिए बोधक वो भी है कि गणपति में भी चलेगा, नवरात्रि में चल, आते रहो लाते रहो।
2: तो एंजॉय करनी है ना।
1: बिल्कुल। तो चलिए उसी के साथ पूछते हैं आपको आज का सवाल। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन, ठीक है?
2: यस।
1: चलिए तो देखते हैं आपका नवरात्रि के जो गाने हैं उनका नॉलेज कैसा है। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मैंने पायल है छनकाई अब तो आ जा तू हर जाए। ये किस फेमस सिंगर ने गाया है? यार ये तो एकदम टॉप ऑफ द टंग होना चाहिए।
2: फाल्गुनी पाठक।
1: क्या बात है, इतना टाइम वैसे आपको नहीं मिलना चाहिए था, बट चलिए ठीक है, अभी फाल्गुनी जी ने भी अब वो माफ कर दिया। तो अब आप क्वालिफाई तो हो रहे हो अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए। लेकिन देखिए कंपटीशन तगड़ी होने वाली है, तो प्रिपेयर करके आना, इस बार इतना टाइम नहीं मिलेगा हमारे फाइनल राउंड।
2: ओके ओके ओके।
1: तो चलिए बबीता जी, आपसे मुलाकात होगी हमारी वीरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर, जहाँ होगा हमारा फाइनल राउंड और वहाँ पर आप जीत सकते हो गोल्ड चेन, ठीक है?
2: ओके।
1: चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बबीता जी। और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स में, तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे मिर्ची के नंबर पे भेजिए 9033647244। या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची नौ लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से आज

0: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
1: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस 51,000 का इतना ही नहीं 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
2: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
3: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
5: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
6: चलती हुई कार्स में न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में
1: धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी
6: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस गो टू आरके ज्वेल्स बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244 दैट इज 9033 मिर्ची एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
7: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं ये दिवाली नानक वाली सो गुड सो प्योर इट्स नानक
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे
10: रंगीला तारा रंग
6: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार
11: 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट viraniejewelers.com
12: तेरा क्या होगा कालिया
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
12: अब मिर्ची खा
14: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
15: श्याम सरदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम
16: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स स्पाइसी क्रंची और देसी फन या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल क्योंकि दीप खाओ तो जानो तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

अब ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को अगर खुद ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनना पड़े तो शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। OTT पर अक्टूबर 9th को आ रही है इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अब जरा इमेजिन करते हैं कि एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने निकली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। और साथ में है देवेन भुजानी, अदिल हुसैन और शेखर सुमन। वैसे मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म, दूसरी तरफ सस्पेंस, और बीच में वो सवाल कि सच तक पहुंचने के लिए ये कितना रिस्क ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्राइम थ्रिलर जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, या वो जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं? DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अगला गाना है एक ऐसी फिल्म से जहां एक फोन कॉल ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तो अभी आप भी जरा याद करना इस मूवी की स्टोरी क्या थी। फिलहाल बजाते हैं ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Milci. Disco Burga, Burga. La firma la Burga. Milci Burga.
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ा सा ये टेस्ट

0: कैसे करते हैं ये?
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
0: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप, फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर की भाई क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
0: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
0: चलो
1: मतलब
0: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
0: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
0: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
0: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
0: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
0: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
0: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
0: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
0: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
0: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
5: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
11: The Joy Wali Diwali by Joy Alukas is back. And as always, it is the biggest and best deal in town on jewelry purchases this festive season. Get free 24 karat gold bars and cash vouchers on diamond and precious stone jewelry purchases. Pay zero making charges on 8 gram 22 karat gold coins. Much more awaits you at Joy Alukas this festive season. Offers valid until 8th November 2026. TNC apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
12: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
13: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
14: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
18: दे सेल नेचुरल डायमंड्स best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Is Diwali, jab apnon ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. Red Label ki har ek roshni wali chuski, dilon ke rishte aur celebration ko kar de aur bhi roshan. Har pack ke saath badhayein apnon ka pyar, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
20: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
21: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
22: अरे कहना क्या चाहते हो,
23: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
24: 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
25: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
26: Listener, mai back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
27: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इश्यू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेप्यूटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi 9 Lakh Ka Haar, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन. इट्स डैम एक्साइटिंग. एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब. मैं हूँ Priscilla on Mirchi Mornings. Let's see who's online with me. Hello.
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi 9 Lakh Ka Haar and azmao your luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: All right, that's great. Nervous होने की तो बात ही नहीं है. मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर. All right, are you a movie buff?
2: Yes.
1: All right, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: All right, so अब आप next round में चले गए हो. नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए.
2: थैंक यू. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल दैट पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.
1: ओके, ऑलराइट.
2: वी डोंट सेलिब्रेट बट वी आर वी टेक पार्ट इन वी जॉइन फ्रेंड्स.
1: ग्रेट ग्रेट. आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
5: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
6: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels Mega Prize. हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
6: अरे पर कैसे?
5: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
8: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
9: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
14: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
15: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
0: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
5: धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
0: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तैयारियां शुरू हो चुकी आपको सोने की चेन्स देने का भी, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लख का हार। जी हाँ, नवरात्रि की 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो आज किसकी किस्मत खुलती है, चलिए जानते हैं। मेरे साथ है कॉल पर ध्वनित जी। नमस्ते ध्वनित जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: बस फर्स्ट क्लास, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम बढ़िया। तो आप बताइए, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
2: एकदम जोर से।
1: क्या बात है, तो चलिए आपकी डांडिया तो रेडी है और हमारे सवाल आपके लिए रेडी है फॉर मिर्ची 9 लख का हार कॉन्टेस्ट ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो आपके लिए जो ये सवाल है, बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल है। आपने नवरात्रि के तो बहुत सारे गाने सुने ही होंगे, उसमें से एक गाना है छो घड़ा थारा। तो वो ये जो गाना है छो घड़ा थारा, कौन सी मूवी का गाना है?
2: लव यात्री।
1: पक्का?
2: पक्का।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ आप आ जाते हो हमारे फाइनल राउंड में और आपको जीतने का मौका मिलेगा सोने की चेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी नवरात्रि।
2: थैंक यू, सेम टू यू।
1: और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हो नवरात्रि के इस सुनहरे अवसर पर गोल्ड चेन जीतने का मौका, तो आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लख का हार में ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। चलिए तब तक सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस।

0: Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
0: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
2: चलती हुई कार्स में न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में
3: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी
4: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद आरके ज्वेल्स ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस गो टू आरके ज्वेल्स बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244 दैट इज 9033 मिर्ची एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: Here's something you won't want to miss, a beat of our own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community and a story about finding common ground when it matters most. Catch a beat of our own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
10: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा
11: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
12: अरे कहना क्या चाहते हो
13: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार
11: 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट viranijewelers.com
15: तेरा क्या होगा कालिया
16: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
15: अब मिर्ची खा
17: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

छोटी जगहों की एक खास बात होती है कि न्यूज चैनल से पहले पूरे मोहल्ले को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्राइम वीडियो पर दुपहिया का सेकेंड सीजन इसी स्मॉल टाउन चार्म को वापस ला रहा है, यानी धड़कपुर के लोग, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स और एक मोबाइल टावर आने से शुरू होने वाली नई नई कॉम्प्लिकेशंस। गजराज राव और रेणुका शाहने जैसे एक्टर्स के साथ ना मुझे ऐसे शोज का ह्यूमर काफी रिलेटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी किसी ग्रैंड सेटअप से नहीं बल्कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और लोगों के रिएक्शंस के वजह से होती है। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में किसी भी मोहल्ले में कुछ भी हो जाए, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे सबसे पहले सारी बातें पता चल ही जाती है। तो आपके फैमिली या फ्रेंड ग्रुप का ऑफिशियल न्यूज रिपोर्टर कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi. और अब धड़कपुर के हंगामे से सीधा बॉलीवुड की सुरत तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नाम सुनते ही ना हीरो का चेहरा याद आ जाता है, लेकिन कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही सीधा दिमाग में गाना बजने लगता है। शम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आवारापन टू वही एक फिल्म है जिसका नाम सुनते ही ना दिमाग में तो यार ओरिजिनल आवारापन के गाने चलने लगते हैं, जैसे कि इमरान हाशमी का वो इंटेंस अंदाज, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, यार एक अलग ही म्यूजिकल मूड था उस फिल्म का। और अब सीक्वल प्राइम वीडियो पर आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जब भी किसी फिल्म का म्यूजिक इतना ज्यादा आइकॉनिक होता है ना, तो सीक्वल से भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ स्टोरी की नहीं होती, ऑडियंस उस ओरिजिनल फीलिंग को भी कहीं ना कहीं ढूंढती है। तो आप भी बताइए कि आवारापन का नाम सुनते सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और क्योंकि बात शुरू है म्यूजिक से, तो चलिए उसी नॉस्टैल्जिया को कंटिन्यू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची विद माई फेवरेट आवारापन सॉन्ग राइट हियर। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Cabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Mirchi, Burga.
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन, तू ये बता।
3: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स
5: पटाक। लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
6: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
8: हर साल की तरह RK Jewels फिर से लाया है RK Jewels मेगा प्राइस, हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस। 51,000 का? इतना ही नहीं, 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
10: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
11: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: शाम सरदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
15: नवरात्रि में ना केम छो का कभी कभी जवाब अच्छू भी होता है। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और न्यू जर्सी में अक्टूबर आते ही एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो लोग नवरात्रि के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं या फिर हैलोवीन के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ घर में टिश्यूज, कफ ड्रॉप्स और गर्म चाय का स्टॉक बढ़ रहा होता है, बिकॉज फ्लू सीजन इज ऑफिशियली हियर। और हर घर में एक ऐसा इंसान तो जरूर होता है जो छींकने के बाद कहता है कि अरे यार कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। और हर साल यही वो इंसान होता है जो फ्लू से सबसे पहले ग्रस्त होता है। तो जी हाँ, अगले दिन पूरे घर में सबकी आवाज आरजे जैसे सीधा हस्की सिंगर जैसे बन जाती है। लेकिन अपना ख्याल रखिए दोस्तों, रेस्ट कीजिए, फ्लू शॉट अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। लेकिन एक सवाल कि यार घर में जब सर्दी हो जाती है तो सबसे पहले क्या बनता है? अदरक वाली चाय, हल्दी का दूध या मम्मी का कोई स्पेशल नुस्खा? जरूर बताना डीएम में और इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और जब गला थोड़ा रेस्ट मांग रहा होता है ना, तो गाने की जिम्मेदारी हम ले ही लेते हैं। इसीलिए आप ही के लिए अगला बॉलीवुड फेवरेट ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग दर मिर्ची में चलना है वीरानी जूलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लख का हार जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन. लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है. हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय व्हाट्स योर नेम.
2: हाय माय नेम इज दीप्ति.
1: हाय दीप्ति हाउ आर यू डूइंग टुडे.
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: Good, good. It's going great.
1: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ.
1: अरे वाह लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
2: Yeah, yeah.
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना ठीक है. Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
2: It's tiger.
1: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. Move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
6: हर साल की तरह आरके ज्वेल्स फिर से लाया है आरके ज्वेल्स मेगा प्राइस. हीरे और नवरत्न से जड़ा हुआ 51,000 का गोल्ड नेकलेस. 51,000 का. इतना ही नहीं 12 वॉचेस एंड 12 डायमंड रिंग्स. आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6445.

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
4: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
3: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com। ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइन्स एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
5: अरे पर कैसे?
3: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: Here's something you won't want to miss, a beat of our own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch a beat of our own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy or
13: confusion ही confusion.
14: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
17: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
18: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ हमारी आपको गोल्ड चेन देने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मिर्ची पर इस बार मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, यानी नवरात्रि की 9 रातें और 9 मौके गोल्ड चेन जीतने के। तो चलिए देखते हैं आज मेरे साथ कौन जुड़ने वाले हैं टू विन गोल्ड चेन। आई हैव विथ मी द वंडरफुल रीमा जी। नमस्ते रीमा जी।
2: नमस्ते जी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। तो डांडिया खेलने के लिए तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो वैसे आपका डांडिया का फेवरेट गाना कौन सा है?
2: ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बड़ा सभी अच्छे लगते हैं।
1: तो कुछ भी बजा दो आप डांडिया खेलना चालू कर दोगे, राइट? चलिए, तो आपको मैं पूछूंगी मिर्ची 9 लख का हार इस कॉन्टेस्ट के लिए एक आसान सा सवाल, उसका अगर आप जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, तो तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, ये शाहरुख खान की किस मूवी का गाना है?
2: उड़ी उड़ी जाए
1: जी। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया, राज
2: रईस का है शायद।
1: पक्का? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, रईस का गाना उड़ी उड़ी जाए, नवरात्रि का सबसे पॉपुलर गाना। इसी के साथ आपको हमारे फाइनल राउंड में आने का मौका मिलेगा टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
2: ऑलराइट, थैंक यू।
1: तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात होगी जल्द ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राइट डाउन नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi. और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकत स्पिरिट
2: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
1: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांची 7 कलाक थी।
2: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट GayatriCenter.org टुडे।
0: चलती हुई कार्स में, न्यू जर्सी के जगमगाते बाजार में, कैफे क्लब्स और बार में एक ही गाना है सबके दिमाग में।
3: इस धनतेरस सिक्कों की खनक और भी सुरीली लगेगी जब पब्लिक हर घंटे 10 गोल्ड कॉइन जीतेगी।
0: रेडियो मिर्ची इन एसोसिएशन विद RK Jewels ब्रिंग्स 10 का 10 धनतेरस। गो टू RK Jewels, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीट टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
1: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
2: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
6: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
7: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org।
8: ना नखरे ना बहाने, इस धनतेरस 10 का 10 बनाएंगे हम। जीतिए 10 गोल्ड कॉइंस एवरी आवर ऑल द आवर ऑन द धनतेरस डे।
9: अरे पर कैसे?
8: सिंपल, गो टू आरके ज्वेल्स, बाय एनीथिंग एंड व्हाट्सएप अस योर परचेज रिसीप्ट टू 9033-647244, दैट इज 9033 मिर्ची, एंड बी एलिजिबल फॉर द लकी पिक। 10 का 10 धनतेरस।

0: Dhanteras, brought to you by RK Jewels. Best quality, best price.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
4: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा बाय बाय सायोनारा टू यू. लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है. तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.